कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजुनी शैलम गुरु प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक होशी सत।

हरे गावन तुदनो चेत गोपत लेख जानन लेख लेख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंदर इंदर आसन बैठे देवते आंदर नाले

रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिन सी माया जिन उपाई। कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई। सो पात साहौ साहा पात साहेब नानक रहण रजाई। आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए के वड वड्डा डीठा होए। कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए।

रहाउ। सब सुरती मेलो सुरत कमाई, सब कीमत मेलो कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तिल वडियाई।

प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपतासा है मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चितवै उदम जा आहर हर जियो परया

सिर सिर रिजिक संभाहे ठाकुर काहे मान पाओ करया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा तिस पाछै बचरे शरया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घाट घाट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा

जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह है हर त्यावह है तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी, से मुकत भए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन।

अनेक पढ़ है बहु सिमरत शाश्वत जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावह मेरे हर भगवंता। तू आद

मैंडा साई, जो तौ पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हौ पाई रहाऊ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया।

रहाओ। ना हो जती सती नहीं पड़ेया, मूरख मुगदा जन्म पाया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जैन तू नाही विसरया। आशा महला पंजवा, पई परापत मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत पाज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाऊ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें कबेउ बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दय मोहे बचावह। सुखी बसै मोर परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज करदै करियै, सब बैरन कौ आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुमह शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन सत्र हमारे मारिया। आप हाथ दाय मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा।

समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस फूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकारख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब अकारख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत पूज खान बहुर राज दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दोष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरै तत काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मोहरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह।

रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दो ता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारणा सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरा घर ता तेरा सब किशो है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया।

पौड़ी। तिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे, उथे तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए, तेरा छड जाहे। पहु जल बिखम असगाहो, गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे।

जो प्रभु को मिल बूचह खोज शब्द में राज करेगा खालसा या की रहना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सूतरे जो सरदा कर सिम दे गुर पार उतारन खंडा जाके हाथ में कलगी सो है

कर्म धर्म जुगता निमुख नाहे तो करता गर्भ गर्भ पड़े कही ना लिखे जस पेटिए सफल मूरत करै सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत रहो पेख मन हठ जो

0: कीर्तन दौरान मैया फुला की मां करनी है जी। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह। श्री अकाल।
2: डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी, उस्ताद रघबीर सिंह जी, सारे जथेदार बहुत धन्यवादी हाँ। बहुत ही सहज नाल इन्होंने राग, पहला राग कन्नड़ा ते बाद विच राग गौड़ी माझ जो कि मिश्रित राग है, उस विच शब्द गायन किया। हुण मैं बेनती करदा हाँ साडे बहुत ही सत्कार जो भाई निर्मल सिंह जी नागपुरी, दो रागों विच शब्द गायन करनगे, राग माली गौड़ा अते राग कल्याण। जिवें कि तुसी बेरिए दी सारी संगत जानदी हो, निर्मल सिंह नागपुरी जी विश्व प्रसिद्ध गुरबाणी कीर्तनी अते श्री हरिमंदर साहब अमृतसर दे साबका हजूरी रागी रह चुके हैं। जवानी दे दिनां तों ही भाई निर्मल सिंह जी ने शास्त्री संगीत की सिखलाई प्राप्त करके गुरबाणी कीर्तन की कला नूं निखारिया। आप जी का जन्म सुरजीत सिंह जी और श्रीमती सुरिंदर कौर जी के ग्रह विखे होया। कीर्तन अते तबला वादन की मुढ़ली सिख्या आप जी ने अपने पिता जी तो प्राप्त की, बाद विच शहीद सिख मिशनरी कॉलेज विच उस्ताद अवतार सिंह जी नाज, जिन्हां दे होर भी बहुत सारे मशहूर कीर्तनी शिगिरद हैं, उन्हां दी रहनुमाई हेठ दो साल तक विधिवत तलीम। नागपुर के नेड़े ही अपने शुरुआत जीवन तो बाद आप जी ने आप जी अमृतसर आ गए, जिथे सन 1999 विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब अमृतसर के हजूरी रागी बनने का महान सम्मान प्राप्त होया। आप जी की आवाज गैर मिठी रूहानी प्रभाव वाली है, जो लंबे समय के निरंतर रियाज का नतीजा है। अपनी सुरमई गायकी सदका आप जी ने विश्व भर में अणगिणत श्रद्धालुओं ते संगीत प्रेमियों का प्यार हासिल किया। 2009 विच आप जी ने श्री गुरु नानक साहब जी के गुरपुरब समागमों के मौके से अमरीका के व्हाइट हाउस में कीर्तन करने का विशेष सद्दा प्राप्त होया। अजकल आप जी कैलीफोर्निया विच ही रह रहे हैं। आओ हम प्यार नाल शब्द सरवण करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

संगत कोलो सिखेमा थे जा चुका शब्द कुछ कठिन सी एक्चुअली सानू गीत टाइप जिन्हों का रिदम राइम मिलता है वह शब्द ज्यादा गुरबाणी के सारे ही शब्द सानू जरूर विचारने चाहिए ने गाने चाहिए ने इस करके इस शब्द का असी गायन किया आओ मल्हार की पौड़ी गा के तड़ तो आ गया चाहांगे।

0: रामकली महला तीजा।
1: गुरु रूप प्यारी सत्संग जी, एक बेनती करनी सी कि कल सवेरे 7 बजे आसा दी वार दा कीर्तन भाई सिमरनजीत सिंह जी खालसा करनगे, ते सारा दिन ही प्रोग्राम चलेगा। उस तो बाद 9 बजे भाई गुरप्रीत सिंह जी दा जत्था कीर्तन करनगे, उस तो बाद बीबी सोनी कौर जी कीर्तन करनगे, 10:30 तो बाद फिर 3:15 बजे तक ब्रेक है, फिर 3:15 रात तो लैके रात 10 बजे तक राग दरबार इस तरह चलता रहेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।

अनहता शब्द वा जंत भेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तुह का सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद बिमल नानी एक पद गंध बिन सहस तब गंध विच अलत मोही समय जो जोत है सोए तिस दै चानन समय चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो आनंद नो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग कौ होए जाते तेरे नाय वासा राह गौड़ी पूर्वी मोहल्ला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हारली मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर साधना जानिया तिने अंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चलै चुभै दुख पावै है जम काल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव कंडा हे अवनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वट वड्डा हे जन नानक नाम उधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राख गौड़ी पूर्वी मोहल्ला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत हर की बेला इहा खाट कल हो हर लाहा आगे बसन सुहेला आउद घटै दिन सरैण आरे मन गुरमिल काय सवारी रहाओ यो संसार विकार संसी मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया वह एहो रस अकात कथा दिन जानी जाको आए सोई।

ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, सलोक उरतारे जो अंतर नाम, सर्व में पिखै भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, परत्रय रूप न पिखै नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, कारण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की बाशना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए पिन, कर्म करत होवे नेह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरा नाम जपावै, नानक ओ वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिसन परीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म में सोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै, वेद पुराण सिमरत बूजै मूल, सूखम मै जानै असथूल, चहवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारै, पाशु प्रेत मुगद पात्र को तारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत के तना पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सो जी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै,

जैसी मत दे तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रम उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तहरै, कई कोट कब काब विचारै, कई कोट नवतन नाम त्यावै, नानक करते का अंत न पावै। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभेग आत्म ने कोर, कई कोट पर दर्ब को हिरै, कई कोट पर दुख न करै, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रास भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पाणी बैसंत्र, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र, सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस ने सतारै। कई कोट राजस तामस सातुक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसासत, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरिमेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जाख्य किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते निरै सब हूते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बहु जोने फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिले प्रभ अविनाश, कई कोट मंगै सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्थार, कई बार पसरियो पसार, सदा सदा एक एक ओंकार, कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तात के बेते, सदा निहारै एको नेत्रे, कई कोट नाम रास पीवै, अमर भय साद साद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रास सुख सहज समावै, अपने जन को सा सा समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलहारण है, जल थल महियल सोए। अष्टपदी करण करावन करने जोग, जो तिस भावै सोई होग, खिन मैं ताप उथापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मैं रहया समाई। प्रभ भावै मनुख गत पावै, प्रभ भावै तां पाथर तरावै, प्रभ भावै बिन शास्ति राखै, प्रभ भावै तां हर गुण पाखै, प्रभ भावै तां पतित उधारै, आप करै आपन बिचारै, दुहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै बिगसै अंतरजामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मनुख ते क्या होयावै, जो तिस भावै सोई करावै, इस कै हाथ होए ता सब किश ले, जो तिस भावै सोई करे, अन जानत बिख्या मै रचै, जे जानत अपना आप बचै, भरमे भूला दह दिस तावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै, कर किरपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते

नाम मिले। खिन मैं नीच कीट कौराज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै। जाको अपनी करै बख्सीस, ताका लेखा न गन जगदीस। जियो पिंड सब तिस की रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बडाई। इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्ब को नाथ। आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावै सोई फुन थियो। कबहू ऊंच नीच मैं बसै, कबहू सोग हर करंग हसै। कबहू नींद चिंद ब्योहार, कबहू ऊब आकाश पयाल। कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। कबहू निरत करे बहु पांत, कबहू सोए रहे दिन रात। कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्ब की हो तरवाल। कबहू होए बह बाड़ राजा, कबहू पिखारी नीच का साजा। कबहू आप कीरत में आवै, कबहू भला भला कहावै। ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै, गुरप्रसाद नानक सच कहै। कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन धारी लावे ध्यान। कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमै परमिया। नाना रूप ज्यो सुहांगी दिखावे, ज्यो प्रभ भावै तिवै नचावै। ज्यो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए। कबहू साध संगत एह पावै, उस अस्थान ते बहुर न आवै। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस अस्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान। सलोक सुखी बस।

0: नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन जो जाने मैं जोवनवंत सो होवत बेष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहु जोन परमावै धन भूम का जो करै गुमान सो मूरख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुकत आगै सुख पावै तनवंता होए कर गर्भावै तृण समान कश संग ना जावै बहु लस कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत किसे ना बदाए आप अहंकारी धर्म राय किस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हौ तारे श्रम पावे सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरक फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्ब कीरेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जानै मुझते काश होए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जानै मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे कु बैरी मीत तब लग ने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हौ छूटै सहस खटे लख को उठतावै त्रिपत न आवै माया पाछै पावै अनेक भोग बिख्या के करै नह त्रिपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो केश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बूझै देखै करै बबेक आपे एक आपे अनेक मरै ना बिनसै आवै ना जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन बिसथार सब काश उसका ओह करने हार उस ते भिन कहो किश होए थान थनंतर एकै सोए आपने चाले तो आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सात सात सात प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अस सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखयाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुरु बहुरु अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा घटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मैं पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सोभा तेहीन संत के हते कौ रखै न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों न पाए संत कै दुखन त्रिगद ज्यों न किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब को शलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता ओए पीहि गत पाहे संत का निंदक महा आतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मह दुख, नानक संत पावै ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी कौ डान लागै, संत के दुखी कौ सब त्यागै, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत पावै तां लै मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै, संत के दुखी कौ उदयान परमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावै तां लै उबार, संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ई धने त्रापै, संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पाया, नानक जो तिस पावै सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइयै, संत का दुखी ना मरै ना जीवाइयै, संत के दुखी की पूजै ना आशा, संत का दुखी उठ चलै निराशा, संत के दुख ना तृष्टै कोय, जैसा पावै तैसा कोई होए, पया किरत ना मिटै कोय, नानक जानै सच्चा सोए, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तत करहो दिन रात, तिसे त्या वह सास गिरास, सब काश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करै तिस आपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से सलोक, तजो सियान पसुर जनो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपदी मानुख की टेक, वृथि सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए, मारह रख है एक आप, मानुख कह कृष्णा ही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बेगन न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगै नानक उजल मथा, बड़ भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गने संसार, मान तान मोख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछानै, ए तो उत कियो सोजी जानै, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्ह निरंजन जानिया, गुरप्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त मैं सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागै दुख, जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डोलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस ते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरप्रसाद तत सब बूजिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नह किश जन्मै नह किश मरै आपन चलित आप ही करै आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मैं आप अनक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए तनानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उधरै तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उधारण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जप पय निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करै बड भागै नाम जपत पावै बिश्राम नानक तिन पुरख कौ उत्तम करमान जो किश करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहज सुभाए होवै सो होए करणै हार पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निधान उन्हों बान आए आप सकाओ आप दिनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाकै सिमरन उधरी आए नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु ना होए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरै किश काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहै प्रभ की जोत सगल घट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ जं सब केश तिसका दिया दरबै आतसूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहता वै जे को होए बाहे दातार तिस दिन हर जानै गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हौ रोग नानक सो जान सदा आरोग ज्यो मंदर को थमै थमन त्यों गुर का शब्द मने अस थमन ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस तरै ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन होए बिगास ज्यो महाध्यान में मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै तिन संतन की बाशो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाइए पूर्व लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कश करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बस आई तेरे संग लपट रहे ओ रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पात सेती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोल लाद खेप संत संग चाल अवर त्याग बिखिया जंजाल धन धन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए एहो वापार विरला वापार नानक ताकै सद बलहारै चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध कहो अपना जियो साध की तूर करो इसनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ऊट गही संत दर आया सर्ब सुख नानक तेह पाया मृतक कौ जी वालन हार भूखे कौ देवत आधार सर्ब निधान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किश तिसका ओ करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जाप जान सदा सदा दिन रैणी सब दे ऊच निर्मल एह करनी कर कृपा जिस को नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाकै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए ते हो लोए जाकै हृदय एको होए सच करनी सच ताकी रहत, सच हृदय सत मुख कहत, साची दृष्ट साचा आकार, सच वरत है साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। सलोक रूप न रेख न रंग किशो, त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न, तिसै बुझाए नानक जिस हो वै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मै राख, मानुक की तू प्रीत ते आग, तिसते परे नाही किश कोए, सर्ब निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निदान दयाल बखसंद। साध तेरे की चरणी पाओ, नानक कै मन एहो अनराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फूर, तिसका मंत्र न जाने होर, आनंद रूप मंगल साध जाकै, सर्ब थोक सुनिए कर ताकै। राज मैं राज, जोग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। जाकी लीला की मित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जन दे, जन दास नाम त्या वैसे। तेहो गुण मैं जाको परमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए, ऊंच नीच तिसके अस्थान, जैसा जन आवे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेख करै इक रंग, नाना वेद कीनो विस्तार, प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलित करे खिन माहे, पूर रहे ओ पूरन सब ठाए, नाना वेद कर बनक बनाए, अपनी कीमत आपे पाई। सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खांड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम कै संग उधरे सुन श्रवन। कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पाद मैं सो जान गत पाए। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जाकी रचना, सत मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई। सत वचन साधु उपदेश, सत तेजन जाकै हृदय प्रवेश, सत निरत बूझै जे कोए, नाम जपत ताकी गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मेतो गत, जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार। करते की मित न जान किया, नानक जो ते सुपावै सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद। प्रभ कै रंग राच जान रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख काटन हार, जाकै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी, जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। सलोक आद सच जुगाद सच, है पे सच नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत प्रसन हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखन हार, नाम सत सत त्यावन हार। आप सत सत सब धारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ बक्ता, सुरत सत सत जस सुनता। बुझन हार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करण करावन तिन मूल पछानिया। जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਬਸ ਮਾਹੇ ਲੈ ਬਸ ਗਡਾਈ, ਤਾ ਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ। ਬੂਜੈ ਬੂਜਨ ਹਾਰ ਬਵੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨ ਹਾਰਾ, ਸੇਵਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੁਮਾਰੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪਤ ਰਾਖੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਨਿੱਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੈ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੱਢਤ ਆਪ, ਤਾਂ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ, ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ, ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ, ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੈ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ, ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ, ਬੂਲਉ ਜਸ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀ ਦਾਤ, ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ, ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਨੋ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ ਹਜੂਰੇ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਨ ਪੂਰੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓ ਟਲੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇ, ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ, ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾਡ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਾਧ ਪੈਰਾ, ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੈ, ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛੁ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ, ਮਨ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹ ਕਾਮੇ, ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ, ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਉ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏਕੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ ਭਰਮ, ਸਹਿ ਸਿਆਣ ਪਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੇ, ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਆਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, अमृत दृष्ट भेखै हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावै तिस लय मिलाए जिह बाएक उस्तत अनेक सत पुरख पूरन बबेक काहू बोल न पहुँचत प्राणी आगम अगोचर प्रभ निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित कर चरण कमल हृदय सिमरै सद बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए उस पुरख का कहे नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग न लेप मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तह ते नासे तपत माहे ठांड वरताई आनंद भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पाव चूका निरपाव होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिस का सा तिन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी थेत पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी
1: साथ ना चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बिसारो चरण कमल हृदय में उतार हो करन कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर कहो नाम हर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे

गीत जिस शोभा को करे पलि करनी सा शोभा पज हर की सरनी इनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्ब निदान मैं हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान।

सारपूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिनस जाए हो मैं बिक पैल होए अचिन

या न जाए कीता न हुए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निदान गाविए सुनिए मन रखिए भाउ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण भाणे के नाए करी जेती सिर ठुपाई वेखा विण करमा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी

अमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने सतसंतोख ज्ञान सुने अठसठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पावह मान सुने लागे सहज ध्यान नानक भगत।

सुने दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जिको कह पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जिको मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मुह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जिको मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पात्र स्यों पर घट जाए, मन

जाने कौन कूत किता पसाओ एक कवाओ तिस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई फलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाऊ असंख पूजा असंख तप ताऊ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर कर है पा

ही काहु, नानक हुक्मी आव हो जाहु, तीर तप दया दत दान, जे को पावै तिलका मान, सुनया मनया मन कीता भाऊ, अंतरगत तीरथ मल नाऊ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आथ बाणी बरमाऊ, सत सुहान सदा मन चाऊ, कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रुत्ती

जोर न जुगती छुट्टै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवार, नदरी करम पवै नीसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखहु कर्म, केते पवन पाणी वैसंतर, केते काण महेश, केते बरमे काड़त घड़ी यह रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन, केते

सतनांत। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। शर्मखंड की वाणी जो शर्मखंड की वाणी रूप, तिथै घाटत घड़िय बहुत अनूप। ताकिया गल्ला कथिया ना जाहि, जिकु कह पिछै पछताए।

मान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजेय है, आजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, उजं प्रयाचंद नमो सर्वमानी समस्ति निदानी नमो देव देवे अपेकी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्ये नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाते समस्ती विभूते

सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल, जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नरे।

मरण बही चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरती लोक चौदह के बिख जग जापी जे जाप आद देवनाद मूरत थाप्यो सबै जे थाप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्विश्वरच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो भरम रहता भूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुष्ट एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार।

प्राण जाक है नित भाखत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवही वह चित मद पार छंद व प्रसाद गुनगन उदार महिमा अपार आसन अपंग।

निर्भय निकाम अतदुत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रनाड्य अंडंड बाड्य चाचरी।

प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दानी चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय जन्म न जाए न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय दृश्य कृश्य भगवती छंद त्व प्रसाद कथते क्या चिज देश क्या भिज भिष क्या गंज कर्म क्या भंज भरम के आ भिज लोक के आदित सुख है के अवधूत वर्ण के विभूत करण के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के वर्मं स्वरूप है के अनुभव अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहीन है के कै अधीन है के रोजी रजा कह रही मेरे हाक है के पाक वे अवै के गै भूल गै वै कि अफुल गुनाह है कि साहन सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांत है कि राजक रहीम है कि कर्मं करीम है कि सर्वंकली है कि सर्वंगली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैवं प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कली में के परम रही में के अकल आला में के साहिब कला में के हुस्नल वजू है तो मामुल रुजू है हमेशल सलाम सलीकत मुदाम गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमा मै रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम रजाए की यकीन है अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल की राज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुक्त प्रभा हैं सुजुक्त सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैव अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप है उअंगाध रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिबाते अगंजे अगाधे सुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं कि नरकं प्रणास हैं पृथ्वल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं चाचरी छंद

हैं, उदास हैं, अंध हैं, अबंध हैं, अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनाथ हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनित हैं, अलिख हैं, अधिक हैं, अलीक हैं, अपेक हैं, अटा हैं, अगा हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट चंद्व प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रसावल चंद्व प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंद्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है हमें सुल सलाम है सुनस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्नल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहंद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुस्नल जमाल है गनीमुल के राज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकंक प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंक प्रनाश है बहसुल निवास है के सर्बल गवन है हमेशल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परमीश है समस्तुल अधीश है आदेशुल अलेक है हमेशल अपेक है जमीनुल जमा है अमी कुलेमा है करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मद पार चंद्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनाश मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अंचिज अंग आसन अपंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस्विस अपंड जल थल महंत दिस्विस बेअंत अनपवनाश त्रितर तुरास आजान बाहु एक सुदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खलखंड के आल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशिज गातु आजिज न बातु अनचंज गातु अनरंज बातु अनटुट पंडार अनडट अपार आडीठ धर्मु अतटीठ कर्मु अनवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है धरणीकृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजपाकृत है अमृतामृत है निर्नायक है कलकायक है विश्वम पर है कुरुणालय है निर्पनायक है सर्वपायक है पावपंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकुलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासं तामसं शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते
कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल लेख अपेख अनाम काम गाह अटाह अनाथ्य प्रमाते अजूनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल नामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजाय गनी में हरियं करियं करिमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र

अपंगं विभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सुवैये। श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो घर जोग जति के। सूर सुरार्दन शुद्ध सुदा दिख संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के। श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के। माते मतंग जरे जर सांग अनूप तंग सुरंग सुवारे। कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे। भारी भजान के भूप भली बिद न्यावत शीश न जात बिचारे। इते भये तो कहा भय भूप तंत को नांगे पाए पधारे। जीत फिरे सब देश दिशान को बाधित ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गुड़ गजान के सुंदर ही सत ही है राज हजारे। भूत भवेक भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे। श्रीपा श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बसिख है। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पिख है। पौन आहार जति जतार सब सुविचार हजार क दिख है। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है। शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाजस न दुर्जान दलेंगे। भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे। तोर अरिन मरोर वासन माते मतंगन मान मलेंगे। श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे। वीर अपार बटे बरियार बचार सार की धार पछैया। तोरत देश मलिंद वासन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गडान के तोड़ नहार सुबात नहीं चकचार लुवैया। साहिब श्री सबको सिरनायक जाचक नेक सुवेक दिवैया। दानव देव फनिंद निशाचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल में तल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहुपुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सुबह अवलोक जपेंगे। मानव इंद्र गजिंद्र निराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजा दिकदान अनेक सुवंबर साज भरेंगे। ब्रह्म हेसर विष्ण सचिपत अंत बसे जम्फास भरेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह तरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो पग ध्यान लगायो। नाथ फिरियो लिये सास समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो। बास

नानक तू सदा गम है तिरंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी जन सब तुदो पायक वेख परसन आया। लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया। कह नान जिसनु आप तुटा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिख मार्ग चलना। लाभ लोभ अहंकार का तृष्णा बहुत नाही बोलना। खन्ने हो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना सुमानी। कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। ज्यों तू चलाहे तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाहे तिवै चलै जिन्ना मार्ग पावे। कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावे। जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वार है सुख पावे। कह नानक सच्चे साहिब ज्यो भावे तिवै चलावे। एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला। सतगुरु सुनाया एहो तिन कह मन वसिया जिन तुरो लिखिया आया। इक फिरै कनेरे करह गल्ला गली किने न पाया। कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया। हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहि सो पवित संग सुबाइया। कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहजना उपजै बिन सहजह सहसा न जाए। नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए। सहसह जीव मलीन है के संजम धोता जाए। मन धोवो शब्द लागू हर स्यों रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए। जी हो मैले बारहों निर्मल बारहों निर्मल जी हो ता मैले तिन जन्म जुवै हारिया। ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिर है ज्यों बेतालिया। कह नानक जिन सत सजिया कूड़े लागे तिन जन्म जुवै हारिया। जी हो निर्मल बारहों निर्मल बारहों ता निर्मल जी हो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ की सोय पहुँचै नाही मनसा सत सुमाणी। जिन व्रतन जिनी खटिया भले से बनजारे। कह नानक किन मन निर्मल सदा रह है गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई। जी हो रह गुर नाले गुर के चरण हिरदय तिहाई अंतरात्मै समाले। आप छठ सदा रह परनै गुर बिन अवर न जाने कोई। कह नानक सुनहो संतो सो सिख सन्मुख होए। जे को गुर ते विमुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै। पावै मुक्त न हुरथ है कोई पुछ भवे किया जाए। अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु सब सुनाए। कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए। आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो। गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिरबाणी। जिनको नदर कर्म हो वै हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर।

खोज शब्द में, राज करेगा खालसा आकी रहना, ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो, वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे।

0: कुंभे पता चल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का पता मन रहे
1: गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी।

फैल अठ सठ तीर्थ जिन आवे उतरे न ही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब चेती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बात सचे न दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता

वाले घर विवाद गल्लां करे कनेरियां फसुना पाए सा आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान नानक जिसनु लगा जिसमें लगा सो परवान महला दूजा जो जी हो सोगे मौका कह आवाओ बीजे बिक मंगे मृत वेखो न्याओ नालियां ने दोस्ती कदे ना वे राजे हजाने देव वरत वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वसवा दूजियो विपास साहिब सेती कुम न चले।

काम क्रोध अर लोभ मोह वास करे सब बल सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुर नाव निद दरियाओ

0: पूरे सतगुर दिया दिखाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: गुरु रूप सत्संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहला प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संबंध विच जो 31 राग कीर्तन दरबार लिखिया गया सी, उहदे अज दूजे दिन की शुरुआत दे विच असी संगत कर रहे हाँ। अज दे दीवान अमृत वेले दे दीवान दे विच पहला असी नितनेम जी की पंज बाणियों का पाठ अते सुखमनी साहब जी का पाठ, उहदे उपरंत आसा की वार का कीर्तन, संपूर्ण कीर्तन राग आसा दे विच भाई साहब भाई सिमरनजीत सिंह जी और उन्होंने जत्थे पासों श्रवण किया है। भाई साहब होरों का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण उही प्रोग्राम अगे तुरना है असी, जिहड़ा कि कुछ समय लिए चलेगा, उहदे बाद ब्रेक होएगी, फिर आफ्टरनून फिर शुरू होएगा, उहदा टाइम असी दसते हाँ। सत संगत इस वेले साडे संगत दे विच भाई दिलावर सिंह जी शहीद, उन्हां दे माता जी बीबी सुरजीत कौर जी शामिल हन, ते उन्हां नूं गुरद्वारा साहब वालों जी आयां नूं आखते हाँ। ओ आप जी नाल ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰੂਪਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ।

0: इन्हीं सेवा प्रवान करनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु जी की फतेह। सोनी कौर जी बहुत ही सहज नाल शब्द गायन किया, सारे जथेदार मैं बहुत धन्यवादी हाँ। सोनी कौर जी का बेटा संगीत सिंह का भी मैं बहुत धन्यवादी हाँ, जो कि हर वेले इन्हों के नाल गायन करता है। मनजीत सिंह जी, मेहर कौर, अमन कौर, सारे गुरप्रीत कौर जी, सारे जथे का बहुत धन्यवाद हाँ। हूँ सवेर की इस तो बस समाप्ति है, पांच घंटे ब्रेक है, दोपहर तो बाद फिर सवा तीन इस तरह ही कत्ती राग दरबार दा गायन चलता रहेगा। अलग अलग राग जो कि दोपहर के राग हैं, शाम के राग हैं, उन्होंने गायन होएगा। तो सारिया अगे बेनती है कि हुम हम आके पहुँचना, दर्शन देने, सारा कीर्तन प्रोग्राम सुनना, कल भी हाजरियां भरनी हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैगम गुरु प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई।

संत सताओ, संत ग्रंथ निर्देश पाओ, संत योग मन कहे बुलाओ, संत भगत गुण ज्ञान विचार, संत सती का संत दाता, संत सूर मोह भक्ता।

संत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गल वह संत पापी पाप असंत मूर्ख संत मलेच मल पाए असंत।

सबुर तेरे बनाई होए बिनपुर की जय पन्ना होए स्वस्थ आस्तानी ब्रह्मा सत सुहार सलाम

निरंकार निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आद सत जुगाद सत है भी सत नानक उसी

अशंक मूर्ख अंध घोर अशंक चोर राम अशंक अमर कर जाए अशंक कालवड हत्य कमाए अशंक पापी पाप अशंक मूड़े आर करे फिर अशंक मलेच मल पाए अशंक

सालानी थाला है नदियां से बाहर पासों न जान समुद्र चाहता गिरी कुल नामी अंत न सकी कहना अंत न करने देना अंत न देखना सुना।

सोहन मन परवान सदरी कर्म सोवे कछ खाई उथे पाए नानक गया कर्म खंड का।

सत्पुरुष निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी शैवम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे फिराए अशांत मलेच मल पाए अशांत निंदक करे पास नानक नीच कहे नीचा मारे न जामा के जो तुम पावे सही परिता सुखरा सलामत संत नाम संत नाम राम राम संत लो असंत कहें से।

सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म प्रवे कच्छ खाई उथ पाए नानक गया कर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का किते पौन पानी वह संतर किते

0: जिसे आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है बच्ची दे पिता जी नूं कि वो बच्चे दा पल्ला बच्ची नूं पकड़ाउणगे, रागी सिंह पल्ले दा शब्द गायन करनगे जी। बेनती है पल्ले दी रस्म अदा कीती जाए। सुभाग जोड़ी ने आपू अपने तरफों पल्ले नूं पकड़ के रखना है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: नो वी विल हैव द पल्ला सेरेमनी।

निष्कपट निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैगम गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

वाहेगुरु जी की फतेह। हुण मैं बेनती करदा हां बीबी सोनी कौर जी ते जथा स्टेज ते आ जाण ते शाम दे राग राग तिलंग ते राग जैसरी विच शब्द गायन करनगे। इन्हां दी बेटी दा नाम भी जैसरी है। रागां ते बच्चों के नाम रखे हैं। बड़े बच्चे का नाम संगीत सिंह है, छोटा बच्चा मल्हार सिंह, छोटी बेटी जय